स्थान बास्तरी नगरपालिका एक चेपान समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे आयोजक बास्तरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बास्तरी

0: बोली बात मत करो।
1: वो अपना तीन लाख रूपया ही ले रहा थी, तीन लाख रूपया फिर जाते से लगा की
0: कबूल

Israel, वही उन्हें कृपा करें फकीर महा महत्व दिल्ली संचार प्रसार कानून मंत्री बाध्य करी सरकार को सहभागी भैया मोहम्मद सभी बिना विभागीय मंत्री बनाई सरकार को सहभागी भाई को सत्ता साझेदार जनता नेपाल जनमत पार्टी सरकार बाहर मनीष प्रदेश में आज सरकार ने विश्वास को मत दी प्रत्यक्षी दलहर को अवरोध का बीच प्रतिनिधि सभा ने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक बहुमत से पारित कर

0: को देखिएगा तुरंत संबंधित निकाय और समुदाय जान करते हो
1: सामाजिक रूपांतरण का लगे यू सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तो वही सामुदायिक रेडियो CIN।

0: कलर में मत नजाऊ मुख्य भूमिका भनी राख्स होना भन्ना तर सरकार सहज होने प्क्टिकल रूप में करी जब सरकार सहज न होता वहां नियमवाल में टेक जाना पर्च हिजो को अभ्यास अब अस्थित एट अभ्यास के प्रधानमंत्री ने जवाब देना पड़ने ठाव में है हमें नियमवाली भाग माथि संविधान राखे हिरा मैं संविधान भाग माथि नियमवाली राखे तर 35 को उसका टेके जान पर्ची अभी तेज हिजो को दिन देखिए अभ्यास भर को चीज पालना करना पड़ेन है फिर सके यदि प्रधानमंत्री विदेश गए खंड में यदि प्रधानमंत्री को मंत्री को स्वास्थ्य अवस्था ठीक नंड में या तस्ते आपत्कालीन कोई घटना घटे अवस्था में प्रधानमंत्री स्वयं आपको उपस्थित भर जवाब नदे खंड में अर्क मानी अर्क मंत्री पढ़ा सकने लेखी फिर लेखी प्रश्न लेखे अब हजार तो मीडिया में काम कर पैलादी यूनियन दुर्जा प्रसाद कर हस्पिटल में उठे जब जब तक केपी सरकार प्रधानमंत्री ने वहां पर बिरा हस्पिटल गए कति दिन पे हस्पिटल गए फिर हस्पिटल में गए एडमिट होने भाग दु तीन घंटा पे हमें देखी नहीं रह बुझा हमें जनता प्रति उत्तरदायित्व न कि प्रधानमंत्री
1: अब
0: जनता प्रशासन प्रधानमंत्री भेदी वहां को प्रधानमंत्री आपने लिया हो कि न बोलने भाग न हमें देखना पा पाला आम नागरिक प्रश्न चिन्ह उठा अब यहां कुछ अभ्यास भैर अब जो हिजो देखी नभ्यास हमें खबरदारी कर समिति कति चीज समिति बस सकि दुटा समिति बस दुटा समिति बस हज को ये अधिवेशन शुरू हो समिति सब कुछ रखे फिर अर्क नया आई समिति बाहर मीडिया में प्रत्यक्ष चाहिए नदेगी भाई कुछ आई प्रश्न में खोजि अब समिति सेकेंड पार्लियामेंट हो तो जनता आम जनता ने ठा पाने पड़े प्रत्यक्ष देखना पाने सुन्न पाने पे यो अभ्यास भैर जो हमें बिल्कुल उचाई पड़े अब भोलि के हजार भोलि तर हमी इसमें अध्ययन कर

बस इतना बड़ा उसका बेस्ट था तेरा ही पूर्ण ना दिल उसको आज को है ना इसलिए आए ये ना ये रुद्र जाती कि नचना का सम्मोक बात और ना कौन ना का दिल उसको जस्ट शुरू कर सके कुछ साथ है आज को सिचुएशन सोचते में विशेष ध्यान देना पड़ेगा है ना आज को तो देरी काम हो रहा है सरकार ने जाए मुझे तो वो प्लान करना सब भी मरे मरे सामान होगा मुझे यह संग

स्थानीय प्रथम उपयोगिता नगर पालिक में सब भाग बड़ी संपत्ति शुद्धिकरण को रुचि नीति मध्यान्ह बढ़ते गर्मी और तातो हावा को हमें जनजीवन प्रभावित भैया इस वर्ष में बस्ने उपाय बारे मौसम मंथन कार्यक्रम संपन्न भ

बाँसुरी नगरपालिका एक चेपान समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे आयोजक बाँसुरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बाँसुरी।

0: राखेमा संस्थाको शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकारले प्रमाणित लेखन जारी गर्दा फोटो सहितको परिचय पुनः कागजात पत्र उपस्थित हुन पञ्जीकरण समय बिहान 8 बजे से संध्या 5 बजेसम्म स्थान ओम प्यालेस नवजीवन
1: सहकारी संस्था लिमिटेड नगरी के रानी संपर्क नंबर 091 5

चेतन समय 2083 साल जेठ 10 बजे बिहान 11 बजे आयोजक बांसकरी नगर कार्यपालिका को कार्यालय बांसकरी।

जिला सहकारी संस्था को 25 वार्षिक साधारण सभा संबंधी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड को 32 वार्षिक साधारण सभा तथा सुसभाई गर्ने संस्था को नया कार्य समिति को निर्वाचन समेत निम्न मिति समय और स्थान में होने प्रकार संस्था का संपूर्ण सेह सदस्य महानुभावहरूलाई संस्था को सेह सदस्य परिचय पत्र व निर्वाचन कार्य प्रमाणित करी जारी फोटो सहित परिचय खोलने का साथ

0: रहे और न केला भुजी, साग सब्जी फल फूल सहित पूरा खाना ले। बच्चा हमारा तंदुरुस्त बनाए, पूरा खाना का सदन भी मेरा समूह संतान प्राप्त रही।
1: रेडियो कुटावा एफएम को सब्सक्राइब, स्वास्थ्य कार्यालय और जनहित मंत्रालय सुनते हैं।

0: बास गरी नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई हुने सम्बन्धी सूचना।
1: बासगढ़ी नगरपालिकाको दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई यही मिति 2083 साल जेष्ठ 10 गते हुने भएकाले सम्पूर्ण बासगढ़ी नगरवासी दाजुभाइ दिदी बहिनी सम्पूर्ण राजनैतिक दलका प्रतिनिधि समाजसेवीज्यूहरूलाई आमन्त्रण गर्दछौ।
0: स्थान बासगढ़ी नगरपालिका 1 चेपाङ। समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे। आयोजक बासगढ़ी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बासगढ़ी।

0: किशोरीनक म रक्त अल्पता
1: बर्दिया जिल्ला ठेर किशोरी हुकनक म रक्त कमी अर्थात रक्त अल्पता देख पड़लबा
0: रक्त अल्पता हुइलसे शब्द टटकराउन लग्ना चक्करैना अनुहार फिक्का हुइना हो पढाई म ध्यान निदिना समस्या लहना
1: रक्त अल्पता मसे बचकला काइल साग पात दाल गुरी ग्यारा आरा मच्छी सिकार ओ फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो

भएपछि स्वस्थ जीवन अप्नाई निशाना रोग झट्ट बहन ध्यानी दिव्य जीवन खट्ट हुई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी धुम्रपान मदिनामा से दूर रही तर भना नियन्त्रण करी आज निर्णय काली जीवन अजरा निशाना रोग से बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहित मजारी सन्देश।

0: RRR नवाजात के धाम की श्रेष्ठ एक मेरे मेरा खाना किया हाइब्रिड में एमपी 30-30 64 44 यूएस 312 और IMRF 87-86 ओसरेका 49 धर्म राजा चार सावित्री सर्दी बाहन सना मनसुरी राम धान 606-505 301 यमिनी जसिन मसिनो मोटा खाना दिया आप श्रेष्ठ एकमा आशा गर्दा
1: यसले रासायनिक रूपमा युरिया डिएपी पोटास मेरे खुले चलाउने के दिया विषादी पशुपन क्षेत्रीय औषधि उपचार गर्छ
0: स्थान खास गरी किसान सुक्षे दक्षिण सामुदायिक पुस्तकालय

0: होता एक महिना पनी डिवरा लैंड्रेन लैंड्रेन जस्ता उन्नतता बंगुरा बंगुटा पटापटी रूप बिक्री में आएगा छन इच्छुक किसान किसान समूह ने समय में बंगुटा पटापटी खरीद बिक्री करी मौका को पड़ गई भारतीय समृद्ध
1: ये लंची मारा

सरकारी प्रस्ताव विधेयक पर बातचीत समाप्त हुआ। उस समाचार का नाम संस्था पर देने का समिति का निर्वाचन समेत निम्न नीति समन्वय स्थानीय विधायक परिषद संस्था का सब कुछ सदस्य महानुभाव होगा। संस्था का शेष सदस्य परिचय पत्र नेपाल सरकार से प्रमाणित कर जारी करना।

जय गुरु बाबा। संध्या सवा छ बजे हमार संदेश में अपना स्वागत बा मधु कुमार। रेडियो गुरु बाबा एफएम पर दिया से उत्पादित हमार संदेश और दिया का साथी एफएम राजापुर बांके का रेडियो प्रतिबोध एफएम कोहरपुर रेडियो हाथे मारो जानकी गांव पालिका बांके में से प्रसंग प्रसारण हुई की बात। हमार संदेश में दूरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से विद्युत समस्या समाधान कर बांसवाड़ी उद्योग वाणिज्य श्रम कर आय ध्यान आकर्षण बांसवाड़ी आत्म माटी परीक्षण तथा नमूना संकलन तालीम नियोजन बर्तिया में एक महीना मंत्री भारतीय सहित 33 जना लागू सचिव पदाव अनुसार सरकार ध्यान देगत अवैध सामान बरामद और विकास निर्माण का आयोजना में जिला सृष्टि हुई दे लागत पहाड़ पूर्जन मंत्री श्रेष्ठ का कहा। बर्तिया जिला में पासक समय पहाड़ विद्युत आपूर्ति समस्या पर की गंभीर ध्यान आकर्षण करे की बांसवाड़ी उद्योग वाणिज्य समाधान का लाभ पहल करवा श्रम जिला प्रशासन कार्यालय बर्तिया मार्फत ऊर्जा जनस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय सिंहदरबार काठमांडू में ध्यान आकर्षण पत्र पठाई की जिला भर बारम्बार विद्युत ऐना चैना अनियमित रूप में लाइन अवरुद्ध होना तथा ढार वोल्टेज का समस्या विद्युत आपूर्ति मध्य अव्यवस्था का कारण उद्योग कल कारखाना साना तथा मसौला व्यवसाय सेवा क्षेत्र तथा आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुई संग उद्योग तथा व्यवसाय में कार्यरत मजदूर होकर रोजगारी समेत संकट में पड़ उल्लेख कई बात पत्र में विद्युत समस्या का कारण उद्योग तथा व्यवसाय में प्रयोग होना विद्युतीय उपकरण में क्षति पुगना उत्पादन तथा सेवा प्रभाव वृद्ध होना संचालन लागत बढ़ना तथा आर्थिक नुकसानी पिग्न पड़ना अवस्था सृजना होना उल्लेख कर बांसवाड़ी नगर पालिका में मध्यनजर करती वडा नंबर 8 में निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन तथा जिला सृष्टि संघ आधा बहती संघ व आयोजना का निर्माण कार्य तीव्र गति में संपन्न हुआ संबंधित निकाय से अर्जी करवा उसे बर्तिया जिला का विद्युत आपूर्ति होना नियमित और बंद तथा गुणस्तरीय बनाए आवश्यक प्राविधिक सुधार ट्रांसफार्मर तथा लाइन क्षमता विस्तार वोल्टेज नियंत्रण व वैकल्पिक व्यवस्थापन का प्रभावकारी उपाय तत्काल कार्यान्वयन कर समेत मांग कृपा जिला का वास्तविक अवस्था अध्ययन कर दीर्घकालीन समाधान का आवश्यक पहल कैसे उद्योग वाणिज्य संघ से बद्रीनाथ पराल से हस्ताक्षरित पत्र में उल्लेख कर ज्ञापन पत्र संघ अध्यक्ष पराल सहित टोली प्रमुख जिला अधिकारी गगन बहादुर हमारा बांसवाड़ी नगर पालिका का वडा नंबर 8 में एक दिन माटी परीक्षण तथा माटी का नमूना संकलन संबंधी तालीम निर्जला देवड़ा कलाश साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मणा आयोजना तथा बांसवाड़ी नगर पालिका का आर्थिक एवं प्राथमिक सेवा में तालीम हुई। पारिवारिक खेती प्रवर्तन कार्यक्रम से कृषक हुकम का आर्थिक आय आंचल वृद्धि करना उद्देश्य तालीम कार्योजना करना संस्था सदस्य कविराम थारू जानकारी दिलवाच तालीम में सहभागी कृषक तथा संस्था का सदस्य अंकन माटी का नमूना संकलन करना सही तरीका नमूना लेना प्रक्रिया तथा माटी परीक्षण संबंधी व्यवहारिक जानकारी करने का बांसवाड़ी नगर पालिका कृषि विकास संस्था का प्रमुख लाल बहादुर खड़का बताइट मांग अनुसार खेती के जमीन में अधिक परम्परा शक्ति कमी तथा कृषि को उत्पादन घटना आवश्यक व्यवस्था का समाधान में माटी परीक्षण अभियान प्रभावकारी होना अपेक्षा कैशिलक जनबाट कार्यक्रम के क्रम में तालीम में सहभागी तथा और कृषक का जनमत माटी 50 टन माटी का नमूना का परीक्षण समेत कैशिल कृषि शाखा का नायक प्रांतिक सहायक लालू चौधरी के अनुसार किसान का प्रयोग करके इलाक जमीन का माटी में अवस्था माटी का अवस्था में बना सकते तथा आवश्यक पोषक तत्व का कमी बारे जानकारी पाकर तालीम संचालन करने को सहकारी संस्था का अध्यक्ष कलिदाम थारू का अध्यक्षता तथा
केसी शाखा प्रमुख लाल बहादुर खड्काको प्रमुख अतिथिका मानिन्छ। कार्यमा कृषि प्राध्यक सुशीलाधिका नायक प्राध्यक सहायक विमल चौधरी ओम प्रकाश देवकोटा सहकारीका कर्मचारी तथा स्थानीय कृषकहरूका सहभागिता रहेछ। बाँसपानी नगरपालिका युवा उत्पन्न व्यावसायिक सेवा से स्वरोजगार तथा रोजगारीको अवसर से छोड्न उद्देश्यले निःशुल्क टायल मार्बल चरण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नहरूमा नगरपालिका सञ्चालन गर्नलगत 390 घण्टे छुट्टी अवधिका व्यावसायिक सेवामूलक तालिमको लागि इच्छुक नगरवासीहरू कन्सेन्टर खास्टमा तलब हो। तालिममा 30 जना सहभागीका लागि समावेश गर्न कल समय भित्रमा आवेदन देखा नगरपालिका अधिकारीका तालिममा सहभागी फेल क्लास कम्तीमा कक्षा पास गरेका सामान्य लेखपढ प्रदर्शनमा 18 वर्ष पूरा होकर 45 वर्ष निरन्तर व्यक्ति बिना जमा हेर्दा सङ्ग्रह बेरोजगार युवा वैदेशिक रोजगारीमा सेवा नै 53 दलित आदिवासी जनजाति तथा विसर्ग क्षेत्रका नागरिकहरू विशेष प्राथमिकता दिन नगरपालिका समितिका आवेदन देखेर निवेदन सहित नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रति प्रति शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि बाक्रम से प्रति तथा हालसाल फिस्टर पासपोर्ट साइज र फोटो दुई प्रति पेश गर पर्न चलाइएका आवेदन कार्यालय समय भित्रमा पास गरे नगरपालिकाको प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखामा विशेषज्ञको पदमा जनाग्रता तालिम सफलतापूर्वक पूरा गर्न प्रशिक्षकगण नियम अनुसार प्रमाण पत्र वितरण गर्नसँग पुरस्कार तथा स्वरोजगार बन्न आवश्यक आर्थिक परामर्श समेत प्रदान गर्न पास गरी जनाइएका वितरणको निम्ति प्रशासन वैशाख महिनामा फिलहाल दुई भारतीय नागरिक सहित 33 जना लागू औषध सहित पत्रबाट प्रति अपराधी लागू औषध उसार प्रसार नियन्त्रण सञ्चालन प्रमुख सङ्घर्ष सर्च अपरेशनका क्रममा उहाँको पक्राउ पलक र पक्राउ पलक कण्ठ से 307 ग्राम 230 मिलिग्राम ग्राम सुगर ब्रामक कलक प्रहरी चमेलबाट पक्राउ पर्दामा प्रतिमा 17 पाकेका 9 मुगुले तथा भारतका 2 जना रहबाट सबको पुरुष मध्ये 2 जना नाबालक समेतबाट पक्राउ पर्नमा अधिकांश सिमर कर्तव्य प्रसार प्रसारमा संयुक्त अलग जिल्ला प्रहरी कार्य प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्की जानकारीबाट

0: el seguit poble per la zona de la Sala que passa a Pisa la Santa Semana per dia per a 26 anys a Han per a el Pica no sé per a Tram a Xe Tram de Miligram per a un sugar per a la Tramada que la cima per a Tram per a la cima per a Pisa no sé la luz a Pisa de Tram que a la Pista Han en contra de la Tramada बांसुरी नगर पालिका मार्ग निःशुल्क माटी परीक्षण तथा नमूना संकलन का काम किया नमूना संकलन माटी का कौन कौन चीज का परीक्षण प्रसिद्ध हुई की बात गई का हमारा बांसुरी नगर पालिका कृषि विकास शाखा का मार्ग प्राप्ति सहित राजू चौधरी ने पूछल बाटी
1: समाचार का पाया वह ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री
0: त्यास फक्त स्पष्ट विकास निर्माण का

श्रेष्ठ विद्यमान सार्वजनिक खरीद एवं प्रक्रिया प्राप्त जटिलता का कारण काम को कठिन रीति अलग प्रक्रिया द्वारा विकास निर्माण अलग कानूनी कमजोरी ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगाने वो निजी क्षेत्र का उत्साह समेत घटाई रहना इस समस्या समाधान का मंत्रालय अर्थ मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से समन्वय करते हुए जानकारी करे मंत्री श्रेष्ठ आयोजना के पुनस्तरीय काम पर क्रिया सुस्थिर संसदीय समिति सक्रिय भूमिका लेकर पड़ना।

0: समय एलबीटी मतदान कराची काल देश 10 बजे होने भाई संपूर्ण वास्तवी नगरवासी ताजुभाई दीदी बहनी संपूर्ण राजनीतिक दल का प्रतिनिधि समाज के विजय हो गए आमंत्रण कर दशरो
1: स्थान वास्तवी नगर पालिका एक चेपान समय 2083 साल जेठ 10 बजे।

शरीर किशोरी रपट कमी अर्थात रफ्तार बताए पड़वा रफ्तार बताने से सदा पट करावन लगना तो करेगा अनुहार की कमी न हो पढ़ाई में ध्यान देना समस्या रफ्तार बताने से बचकला काय साग पात दाल गुड़िया आरा मछली शिकार फल फूल आयुक्त खाना नियमित रूप पकाई जन फूट कम करी संतुलित घर खाना रोजे स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो गुरुबाबा सहकार्य स्वास्थ्य कार्य में प्रत्याशी दलित मजारी संदेश।

0: किसी काम का नहीं समय हो। लागू पदार्थ को एक पदक को पढ़ने पड़ी व्यक्त मानसिक समस्या र पढ़ाई में असर पुर्याउन सक्छ।
1: साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष मानिरहे गरौ।
0: तनाव भने खुला कुरा गरौ। समाधान लागू पदार्थ होइन,
1: लागू पदार्थ मात्र टाढा बसौ। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौ।
0: रेडियो गुरुबाबु एफएमको सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रतिभाबाट जनहितमा जारी सचेत।

0: ब्रीज की तरह का उपकरण से मंत्रालय के निरंतर समन्वय पक्ष भारतीय पक्ष ने उत्तर निर्देशित संशोधन करे संगे नेपाली चिया को निकासी पुनः सहज भाग
1: राज्य की बोर्डिंग

सुरक्षा मंत्री सीतारमण ने अपने मंत्रालय पहुंच समिति सभी अधिकारियों को खारिज कर

0: सचिव दाजू भाई दीदी बहिनी सम्पूर्ण राजनीतिक दल का प्रतिनिधि समाजसेवीजीहरूलाई आमन्त्रण गर्दछौ।
1: स्थान भास्करी नगरपालिका एक चेपाङ, समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे, आयोजक भास्करी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय।

0: सिक्किम समाजले बिजुहरूलाई आमन्त्रण गर्दछौ।
1: स्थान बास्करी नगरपालिका एक चेपान, समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे।

0: प्रकार गैर कानूनी व वित्तीय अनुशासन विरुद्ध का निंदनीय कार्य हो।
1: यही लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो

फल फूल आदि युक्त खाना नियमित रूप से खाई, जंक फूड कम करी, संतुलित खाना

0: देहरादून सात सब्जी फल फ्रूट संयुक्त पोषण पूरक खाना ने बच्चा तंदुरुस्त बनाए पूरक खाना संसद दुई वर्ष सम्म स्तर पार जारी रहे।
1: रेडियोको पारा एफएम स्वास्थ्य कार्यमा स्वास्थ्य कार्यले पढ्ने आशय जनहितमा जाने सन्देश।